पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301143842।
4: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321430।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125257866।
1: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

जी हा समय ने वापस अची कयूं प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां जो मेज़बान नेमत अला जुणे जो साईं मुंहिंजा इंसानी जिस्म में काफ़ी बीमारियूं थियनि थियूं जंहिंमें डिप्रेशन बि हिकु बीमारी आहे। दुनिया में माण्हुनि खे जेकी नफ़्सियाती मामला ऐं मसइला थियनि था हुननि खे आमतौर ते डिप्रेशन कोठे वञे थो। डिप्रेशन जा मुख़्तलिफ़ सबब थियनि था जिन में को घरू सदमो डुख या माशी मसइला या बेरोज़गारी उहे चंद सबब आहिनि जिन जे करे उहा सूरत हाल पैदा थिए थी। पर जेकॾहिं को डिप्रेशन जो शिकार ऐं उन्हनि मंझां को बि सबब उन ते लागू नथो थिए त पोइ उन जो असुल सबब ॻोल्हण लाइ ॾुखियो थी वञे थो। हक़ीक़त इहा आहे त डिप्रेशन जो हिकड़ो वाज़ियो सबब इहो बि थी सघे थो त काफ़ी असांजी ज़िंदगी में जेकी शयूं लागू आहिनि उन में काफ़ी दोस्त नशो वापराइनि था ऐं उन मां उन मर्ज़ खे ॻोल्हे सघिजे थो। मसलन घटि निंड करण वारी आदत बि हूंदी आहे ऐं घटि निंड करण सां डिप्रेशन में वाधो ख़तरो थी सघे थो। त सोचण सां बि डिप्रेशन में हली वञे थो, माण्हू सोचे न जेतिरो इंसान खे गणती आहे, परेशानी आहे, कहिड़ो बि मसइलो आहे त कोशिशि करे सोचींदो त उन डिप्रेशन जे मर्ज़ में हले वेंदो। पर साईं मुंहिंजा असां खे इहो जुग आहे, असांजो इहो फर्ज़ आहे त हर मरीज़ जी इहा आदत कयूं ऐं उन खां हाल वल वठूं ऐं जेको मरीज़ खां पुछण वञे थो इहो बि बहितर अमल आहे, हुन जी अधु बीमारी ख़तम थी वेंदी आहे। कोशिशि कयूं त जेके बीमार आहिनि, जेके बि परेशान हाल आहिनि, उन खां हाल वठण हाल अहिवाल ज़रूरी आहे। ख़ासि करे उन मरीज़ खां जेको बीमार आहे उन खां पुछण बि तमामु ज़रूरी आहे।

जी साईं जा जेके दोस्त असांजो ॿिन कलाकनि जो साथ ॾियनि था ऐं अॼोके दौर में वक़्तु कढी कंहिंजो साथ ॾियणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं दोस्तनि जी महिरबानी आहे जेके असांजो ॿिन कलाकनि ताईं प्रोग्राम ॿुधनि पिया। लख कुर्ब आहिनि उन्हनि जा ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण लाइ पंहिंजा नाला लिखाइनि पिया, जंहिंमें यासमीन मलिक आहे मीरपुर ख़ासि खां ऐं फ़क़ीर महरम जतोई आहे ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, लुकमान मरी मोहम्मद अमीन मरी सतार मरी हालेपुटा स्टाफ खां ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां, खालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, वकार अली जुणे जो इकरार अली जुणे जो अबरार अली जुणे जो ॻोठु ठुल जुणे जो खां ऐं कुर्बान अली ख़ासिके अली आहे झंडो मरी खां, सोराब मंगरियो फरहान मंगरियो नज़र मोहम्मद मंगरियो ॻोठु सचेरनो मंगरियो लॻे बकापुर खां, असदुल्ला जुणे जो तौकीर अहमद जुणे जो बेबी अबिया फातिमा ऐं अजवा फातिमा ॻोठु ठुल जुणे जे खां। सभिनी जी वॾी महिरबानी, नगमो कयूं पिया अव्हां जे नां ख़ूबसूरत गॾिजी ॿुधूं पिया।

0: It's 10:30 a.m. This time check is...
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03125252786
5: जी हाँ 2315525786
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

आकाश शायर न मरंदुसि कॾहिं आ उभरी पियो ईंदुसि कतिन में वरी चंड उभरी पिया जॾहिं खां भितिन में वरी दीद अटकी असांजी दरिन में वरी।

अॼु इहा समय प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा ऐं आख़िरी लम्हनि में अव्हां दोस्तनि जा कुझु नाला वठंदासीं। कोरी ॻोठ खां रांझन कोरी ऐं सखर खां अली गुल मीराणी, सजाद पालारी थाणे भोला खान खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ास खां यादि कयो, ऐं हाफ़िज़ असद लाइ चांडियो, हाफ़िज़ नवीद चांडियो, ॻोठ मीराणी चंडन खां ऐं ॻोठ मीराणी चंडन खां ई मोहम्मद आलम चांडियो, इनायत ख़ासकेली झंडे मरी खां ऐं ग़ुलाम सरर बागाई मोरे खां, नूर सिंतुनियो बदीन खां, इक़बाल लाशारी ॻोठ सोनो खान लाशारी मीरपुर ख़ास खां, ख़लील अहमद बि फेसबुक ते मैसेज कयो, ख़बर नाहे त ज़ात ऐं उन्हनि ॻोठ कहिड़ो आहे, बरकत जमाली बलोच जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां यादि कयो, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, ख़ुशि नगमो अव्हां दोस्तनि नाम पिया कयूं।

0: या ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
1: जी हा समय शैला गुल जे इन खूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पंहिंजे पुॼाणी ते हयाती बखैर अवां सां मुलाकात ज़रूर थींदी ऐं तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो खे ॾींदा एजाज़ अलाह निगहबान।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
11: सुनते रहो GFM 90.4।
12: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
12: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
12: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
12: 03312525786।
7: जी हाँ, 2315525786
12: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371800-3920।
3: एड्रेस: सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस: अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस: टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खु़शख़बरी: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842। जुमत उल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमत उल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: प्रिंट का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सऊदी अरब के दौरे ते मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल एमएन मके शरीफ ने उमरो अदा कयो। पाकिस्तानी वफद कतुला जी ज्यारत भी कई। उमरो अदा करण बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एमएन मेंबर्स मुल्क ए कौम की तरक्की ए मुसलमान की सलामती लाए दुआ भी घुरी।

सिक्योरिटी फोर्सेज जा केबी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन ॾह खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म वक़्त में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज जे चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। देर सां कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जन भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सेज खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पे। शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ौम खे पाक फोर्स सलाहियतनि ऐं क़ुर्बानीनि ते फ़ख़्रु आहे। मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते बारसनि जे एतिराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बरकुशाई मुलतवी। वकील जदरान नासिर चयो आहे त दिल ते पथर रखी क़बरकुशाई जो फ़ैसिलो कयो हो। रात जी ऊंदाही में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो। आईडी ते भरोसो नाहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझ बि थी वञे पोइ हिते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसइलो हो। ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मिया साहब वेझो हथियारबंदन जो गोठ ते हमलो। हिकु ॼणो क़तल। गोठ रेस करम चांडियो ते हथियारबंदन हमलो कयो। फायरिंग जे नतीजे में फिदा हुसैन चांडियो मारिजी वियो। मक़तूल जे वारसनि मूजिबि मारफाणी धुर जे हथियारबंदन गोठ ते हमलो करे नौजवान खे क़तल कयो आहे ऐं मेहू बि गाए विया आहिनि। नोटिस वरितो वञे। पुलिस चयो आहे त वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। पीर जो गोठ भरसां कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फसल जी देर सां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। गोठ उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद कानर क़तल थी वियो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में तकरार तेज़ थी वियो।

कोटड़ी में बाला बिरादरी के बिन धुरी में थियल झेड़े जो जख्मी पोत वारसन जो लाश रखी धरणो जिम्मेवारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो चार ढी अग मला बिरादरी के बिन धुरी के झेड़े दौरान जख्मी थियल इब्राहिम मला फोत थो हो पोती नौजवान के वारिस औरतन ए मर्दन कोटड़ी थाने आडो लाश रखी धरणो हो जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक की रैली सिंध में सूबन के क्याम के मुखालफत अगवाण सिंध में नवन सूबन वारा बयान मज़म्मत जोगा सिंध सदियों का एक हुई एक ही रही कें भी सिंध तोड़न न डींदी नवन सूबन वारो फैसलो वापस वी नफरत पखिड़न बंद कई वे सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में महंगाई खिलाफ जमायत इस्लामी जो एहतजाज तेजगंज जमायत इस्लामी रैली कड़ी धरणो हो मिठी में भी जमायत इस्लामी जो एहतजाज सासरो वेझो घोट रतन जो तड़ में रहमाए समय जा बिरादरी में बिराड की मालिकियत तकरार तेज रहमा बिरादरी माण्हुनि जो उमरकोट सासरो रोड ते धरणो इंतजामिया का नोटिस वठण जो मुतालबो मुजाहिरन प्लाट बाबत अणघुरी जांच कर इंसाफ कयो वे बी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो

0: ऐं थाईलैंड जे राजधानी बैंकॉक में शागिर्द जे स्कूल में फायरिंग, पंज उस्ताद मारिजी विया। पुलिस मूजिबि नाएं क्लास जे शागिर्द ॾाॾी ऐं ॾाॾे खे क़तल करण बाद स्कूल में पंजनि उस्तादनि खे निशानो बणायो। वाके बाद हमिलो कंदड़ शागिर्द पाण खे हिते बि आबाद करे छॾियो। वाके में मारिजी वियल माण्हुनि जो मजमूई अंग अठ आहे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-200 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842
3: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GA FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GA FM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
1: जी हा 2301-25-25-786
5: GA FM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: के हो तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: महबूब।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़। सिंध की आवाज़।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786।
3: जी हा 2311-5525-786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।
7: सुन वारा हुसन पाजो क کرے ظاہر نہیں دو کر کرے ظاہر نہیں دو کر لکھن میں تھے نہ کوتاہی لکھن میں تھے نہ کوتاہی لکھن میں تھے نہ کوتاہی

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
6: जी हा, 3135525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

कहें भी एक मुल्क ते हमलो टिनी मुल्कन ते हमलो तस्वुर कयो वींदो सऊदी अरब पाकिस्तान ए तुर्किया दिफाई मुआहिदो करे छड्यो सऊदी अरब जे शहर मके मुकरम में टिनी मुल्कन जो सरबराही इजलास थियो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान मके दिफाई मुआहिदे ते सहयू कयूं परडेही खाते मूजिब पाकिस्तान सऊदी ए तुर्किया दिफाई मुआहिदे ते सहयू कयूं आहिनि मुआहिदे तहत टिनी मुल्क दिफाई सहकार के हथी डींदा मुआहिदे तहत कहें भी एक मुल्क ते हमलो टिनी मुल्कन ते हमलो तस्वुर कयो वेंदो मुआहिदे जो मकसद टिनी मुल्कन जे दिफाई निज़ाम के मज़बूत बणाइण आहे अमेरिकी हथियारनि में घटताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती अमेरिकी सदर ट्रम्प जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़खीरे में घटताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर ट्रम्प परेशान आहे काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रम्प नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पाड़े ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ़ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं अमेरिका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करण घुर्जनि जंग बंदी बाबति कयल वायदा पाड़े नवाज़ लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि नवाज़ लीग 24 सीटनि ते कामयाब थी चुकी आहे आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े में हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थींदो नवाज़ लीग वधीक कामयाबी माणींदी सिक्योरिटी फोर्सिस जा केपीके जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन्स 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया एसबीआर मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म वक्स में ऑपरेशन कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया देर में कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सिस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश शहबाज शरीफ चयो त क़ौम खे पाक फ़ौज सलाहियतनि ऐं क़ुर्बानीनि ते फ़ख्र आहे मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते वारसनि जे एतिराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बरकुशाही मुल्तवी वकील जबरान नासिर चयो आहे त दिलि ते पथर रखी क़बरकुशाही जो फ़ैसिलो कयो हो राति जी उदाई में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो आईजी ते भरोसो नाहे मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझ बि थी वञे पोइ ते न हटंदसि चवनि था 10 करोड़नि जो मसलो हो ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे मियां साहब वेझो हथियारबंदनि पारां ॻोठ ते हमले में क़तल थियल शख़्स जे वारसनि जो लाश रखी धरणो ॻोठाणनि शिकारपुर जकमाबाद रोड ते लाश रखी धरणो हयो वारसनि चयो आहे त मारफाणी धुर हमलो करे नौजवान खे क़तल कयो मेहू बि काहे विया आहिनि पुलिस मूजिबि वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी धुरिन में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे पीर जो ॻोठ भरिसां कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में फसुल जी भेल तां झेड़ो हिकु ॼणो क़तल ॻोठ उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में झेड़ो थियो फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद क़तल थी वियो हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरिन में तकरार तेज़ थी वियो मेहड़ भरिसां 3 ॿार पाणीअ जी खॾ में ॿुॾी विया ॿिनि खे बचायो वियो हिकु ॿार ॿुॾी फोत थी वियो लाश हथ कई वई आहे ॻोठ ज़ोरामाची में सभा जो लाश हथ कयो वियो कोटड़ी में मलाह बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े जो ज़ख़्मी फोत थी वियो वारसनि जो कोटड़ी पुल ते लाश रखी धरणो ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो 4 ॾींहं अॻु मलाह बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल इब्राहिम मलाह फोत थियो पोती नौजवान जे वारसन कोटड़ी पुल ते लाश रखी धरणो हयो जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कंदकोट में क़ौमी अवामी तहरीक जी रैली सिंध में सूबनि जे क़याम जे मुख़ालफ़त अॻवाणनि चयो त सिंध में नवनि सूबनि वारा बयान मज़म्मत जोगा आहिनि सिंध सदियुनि खां हिकु हुई ऐं हिकु ई रांदी कंहिंखे बि सिंध टोड़ण न ॾींदासीं नवनि सूबनि वारो फ़ैसिलो वापसि वठी नफ़रत पखिड़ण बंदि कई वञे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में महांगाई ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो

0: आज फैज़गंज में जमायत इस्लामी रैली का धरणो हयो, मिठीअ में भी जमायत इस्लामीअ जो एहतजाज। छाछरो वेझो गोड रतन जो तड़ में रायमा ऐं समेजा बिरादरीन में प्लाट जी मालिकीअ तां तकरार तेज़। रायमा बिरादरी माण्हुनि जो उमरकोट छाछरो रोड ते धरणो, इंतज़ामिया खां नोटिस वठण जो मुतालबो। मुज़ाहिरीन चयो त प्लाट बाबति अणधुरी जांच करे इंसाफ़ कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो। मीरपुर भठोरो जे बॉयज़ हाई स्कूल जी इमारत ज़बून हाल हुअण ख़िलाफ़ उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। उस्तादनि चयो त स्कूल जी इमारत ख़तरनाक आहे, क्लास ऐं स्टाफ रूम जे छतियुनि जा चापड़ किरी रहिया आहिनि, ज़िंदगियूं ख़तरे हेठि आहिनि। मीरपुर बुड़ो में ॻोठ अली मुराद जे ॻोठाणनि जो स्कूल में उस्ताद न हुअण ऐं बुनियादी सहूलियतनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठाणनि चयो त स्कूल में उस्ताद हुअण सूदो ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि, स्कूल में उस्ताद मुक़ररु करे बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। दादू में ॿिन भाइरनि सूदो टिन ॼणनि जे क़तल केस में नामज़द ॿिन जवाबदारनि समेत पंज ॼणा गिरफ़्तार। पुलिस मौजूद मोंदर ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में कार्रवाई करे ॿिन घुर्बल जवाबदारनि समेत पंज ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि में मुजाहिद शाहाणी, अफ़ज़ल शाहाणी ऐं टे शकी शामिल आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
7: 03132525786।
4: जी हा 2315-2576।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301 43 843 842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
11: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
11: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252576।
11: जी हा, 3135525786।
10: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
11: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लगराइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
2: जी हाँ 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया मां कंहिं हिक ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते समझो वेंदो। सऊदी अरब पाकिस्तान ऐं तुर्किया दिफ़ाई मुआदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मका मुकरमा में टिनी मुल्कनि जो सरबराही इजलास में मुआदे ते सयूं कयूं वयूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ ऐं तुर्क सदर रजब ते पुर्दगान मका दिफ़ाई मुआदे ते सयूं कयूं। परॾेही खाते चयो आहे त मुआदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआदो जो मक़सदु टिनी

इस्लामाबाद जी हुकूमत खतरे में आहे। हुननि जी उबती गणप शुरू थी चुकी। वॾा वॾा माण्हू बि चई रहिया आहिनि त हुकूमत वञण वारी आहे। हुननि खे भुल आहे त आज़ाद कश्मीर में संदन हुकूमत ठहंदी। आज़ाद कश्मीर जे ज़िले बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त नून लीग जो हिकु हिसो वज़ीर आज़म खे इतिहाद सां बि विढ़ाइण चाहे थो। जेको मुल्क वज़ीर आज़म खे अख़्तियार ॾियण लाइ तयार नाहे, उहो किन नवनि यूनिट्स या सूबनि जी ॻाल्हि करे सघे थो। अवाम ते एतमाद न कंदड़ मुल्क ते अवाम किन एतमाद करे सघे थो? गुड गवर्नेंस अवाम ते एतमाद सां ई बहाल थी सघे थी। अमरीकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं किन पहुती? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर डोनाल्ड ट्रंप परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान वेझनि साथियुनि सां बि ट्रंप नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमरीका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा नाहियूं। अमरीका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करण घुर्जनि, जंगबंदी बाबति कयल वादा पूरा करे।

0: मियां साहब भरसा में हूं फुरण दौरान मज़ामत हथियारबंद नथा हमले में कत्ल थियल धनार के वारसन जो लाश रखी धरणो गोठाणन शिकारपुर जकबाबाद रोड से मकतूल फिदा हुसैन चांडियो जो लाश रखी धरणो हो एमपीए बुरहान चांडियो की मदाखलत से धरणो खत्म कयो वयो वारसन जो चवण हो तो मारफाणी धुर गोठ से बेगुनाह हमलों कर नौजवान के कत्ल कयो मेहू भी काहे वया जवाबदारन के गिरफ्तार कर मेहू मोटायूं वन पुलिस मूजिब वाक्यो चांडिया मारफाणी धुरन में हलंदड़ तकरार जो नतीजो है। पीर जो गोठ वेझो कायर बिरादरी के बिन धुरन में
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
10: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
7: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
10: 0331252576
7: जी हाँ बुड़ी 361 5 5 786
10: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

जी जना वेलकम बैक भैया लंबिया जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, क्या बात है जना। बहुत प्यारा सा गाना आपकी समाचों की नजर किया और आपने बहुत सुना, बहुत अच्छा लगा। अब जनाब बिल्कुल कोई और बात किए लेते हैं जनाब, आपकी लाइव कॉल देखते हैं कि लाइन शाइन पर हमारे साथ कौन आने वाले हैं। आपने पहले पहले कॉल को

0: हबीबुल्ला सोलंकी साहब फ्रॉम हटड़ी गुलाम शाह, कड़ा हाल चाल है हबीबुल्ला साहब?
1: खैर अशफाक भाई, कड़ा हाल खुश आयो?
0: सफा मस्त मौला, तुम यो बुधायो त हटड़ी गुलाम शाह सफा कियो लगो पियो आहे? मजे में? अच्छा जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त, छा कंदा आयो दा हबीबुल्ला?
1: अच्छा साईं जो हार पो कंदा हूं, ये वणन जो फसल
0: आ। अच्छा अच्छा अच्छा, हार पो कंदा आयो?
1: हां साईं।
0: सही सही सही, मजे आ। तो माना किए तांजो हार पो ले तो?
1: जी जी,
0: हार पो किए ले तो तांजो? ला यो बुधायो केडो गानो बुधन चाहो था आज?
1: अच्छा साईं समन मीरा जो बुधाना चाहूं, बोलन शाम सुबड़ी
0: तितर जाते यार, बोलन
1: यार बोलन शाम सुबड़ी हल चल यार भाई घुमण कचरी।
0: हाय हाय हाय, हल चल यार भाई यार कचरी। वाह वाह वाह, तो कचे में छाऊं दो जो मानू कचे में घुमण विदा है?
1: बस कचे में मजबान कर
0: अच्छा सही सही, मुझे समझ में नहीं था कच्चे में अड़ो छाऊं जो मानू चवन कच्चे में घूमने लाऊं, कच्चे में घूमने लाऊं मन साबक हूं, हवा हूं है ना, बेला हूं ये ना?
1: जी जी।
0: अच्छा अच्छा सही सही, तो कैसे नाले से करना चाहो?
1: अब्दुल गनी सोलंकी, रफी सोलंकी, बाबर के नाले जो बुधंदा संगत के नाले से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही सही सही सही सही,
1: ठीक है सही।
0: साथ बहुत प्यारे से हमारे हबीबुल्ला भाई फ्रॉम हथड़ी, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारा नंबर जो है आप नोट डाउन कीजिए, 03000110448।

0: असां गॾो गॾु
1: इमाम
0: दीन भाई कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा? सभु सफ़ा मस्त लॻा पिया आहिनि। तव्हां इहो ॿुधायो त छा पिया कयो अॼुकल्ह?
1: हा साईं, अॼुकल्ह पंहिंजे बनी जो कमु कार पिया कयूं। वणनि खे जेके वण हूंदा आहिनि फिटी वारनि खे दवा पिया आणणु।
0: अच्छा, हीअ वण छा हूंदा आहिनि?
1: कपास वारा।
0: अच्छा, कपास वारा। ओके ओके ओके, माना तव्हांजी फुटी फुटी तव्हांजी ज़मीन ते थी आहे?
1: फुटी निकिरंदी न साईं, वरी मार्केट वेंदी कपंदी, वरी अॻिते फैक्ट्री वेंदी त कप थींदी, कप वरी वञी ॿियनि मुल्कनि वेंदी त कपिड़ो ठहंदो वग़ैरह वग़ैरह। रील दादा,
0: गुड यार, वेरी गुड, ज़बरदस्त। इहो ॿुधायो, शमन जो गानो थो प्ले कयां, जानी कंहिंजो नालो थो करणु चाहियां?
1: असांखे हमेशह इहा ख़ुशी हूंदी आहे ऐं रेडियो सां इहो लॻा त जेकर गुनगुना इजाज़ कजो त थोरो गुनगुना।
0: अरे मोस्ट वेलकम, बिल्कुल गुनगुनायो।
1: यार कचे में थदड़ी थदड़ी हीरा बहार कचे में हलत हलत हाथ रती मजा खुशबू

0: ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਬੋਲ ਨਿਸ਼ਾਮਸ ਬੁਹੜੇ, ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਬੋਲ ਨਿਸ਼ਾਮਸ ਬੁਹੜੇ, ਹਲਾਂ
1: मूंखे तलाई माण्हू चवंदा आहिनि कचे अचे कचे अचे, मां वेंदो ई कोन आहियां छो त वञणु त सवलो आहे, अचणु ॾुखियो
0: आहे।
1: न थैंक यू, कचे वारा बि असांजो कचे वारा बि असांजा दोस्त आहिनि, तव्हां बि असांजो दोस्त आहियो, पके वारा बि दोस्त आहिनि, सभु असांजा दोस्त आहिनि ऐं प्यारा माण्हू।
0: प्रोग्राम ॿुधे थो ऐं अली मोहन मिर्ग बमरो वॾी भेट ते तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा, जेके दोस्त प्रिंस प्यारा ॿुधंदा उनखे इलाही सारा सलाम, ऐं सोना खान मस्कोई खे इलाही सारा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखियो, थैंक यू। जी जनाब, हमारे साथ बहुत प्यारे से दोस्त, अब चलते हैं एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जानिब, सो गाइस स्टे विद अस, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हल त हलूं वाओ यार जबरदस्त सॉन्ग तव्हांखे ॿुधायो से पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में अशफाक नियाज़ी तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु आहे तव्हांजे पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में ऐं जनाब शाम जे 7 बजे ताईं असां तव्हां सां गॾु रहंदासीं तव्हां असां सां गॾु रहंदो बिल्कुलु जनाब तव्हां असांखे कॉल बि करे सघो था ऐं ज़बरदस्त अहिड़ा प्यारा प्यारा गीत बि ॿुधी सघो था 03001134888 असांजो नंबर आहे जनाब ऐं बिल्कुलु बग़ैर कंहिं हिजाब जे असांखे कॉल कयो जनाब पता शर्मायो था असां अशफाक सां छा ॻाल्हाईंदासीं ऐं कहिड़ी फरमाइश कंदासीं त बिल्कुल जनाब अॼुकल्ह फास्ट फॉरवर्ड दौर थी वियो आहे तव्हां मूंखे बिल्कुल कॉल करे सघो था वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं चऊं था पंहिंजे कॉलर खे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब खैर असां सभिनी सां गॾो गॾु
1: सागर थो ॻाल्हायां
0: सागर साहब किथां पिया ॻाल्हायो सखर खां कहिड़ा हाल चाल आहिनि सागर साहब छा कंदा आहियो सागर भाउ छा कंदा आहियो कहिड़ो कमु कंदा आहियो सागर भाउ माशाल्लाह मोकल हूंदी जुमो
1: आहे
0: अच्छा ॿुधायो त सही अॼुकल्ह जेका पेट्रोल जी क़ीमत छो चढ़ी वई आहे त माना मोटरसाइकिल माण्हू ठाराइनि था या ईअं चवनि था टेम्परेरी कमु करे ॾे छॾे बाहि ॾे सॼी छा ठाहिरायूं
1: बाबा पेट्रोल जी क़ीमत भले 300 थी वञे त बि माण्हू त ठाराईंदा ऐं चढ़ंदा कंदा पर इहो आहे थधो ऐं त ॾींदा
0: अलाह अकबर
1: बेबस माण्हू छा कंदो ग़रीब माण्हू छा कंदो भले हाणे ॾिसो न कणक ॾिसो तव्हां भले 100 रुपया
0: खाइण त आई आहे बिल्कुलु यार ज़िंदगी त हलाइणी आहे न पेट जो गुज़ारो
1: छा कंदो बेबस माण्हू अलाह ते
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा सागर इहो ॿुधायो त 14 अगस्त जो जेको आहे सीज़न स्टार्ट थी चुको आहे त मोटरसाइकिलूं ऑल्टर थियण लाइ अचूं कोई चवे थो त मुंहिंजो जेको आहे साइलेंसर कढी ॾियो यार प्लीज़ ईअं न कजो ख़ुदा जो अथव साइलेंसर सभिनी जेका बि अचे न सभिनी खे प्लीज़ खे तलाह ॾियो त इहा साइलेंसर था कढाइनि कोई अगरि अचे बि सही त प्लीज़ ईअं कजो परेशान करण ऐं जेका बाजा अची विया आहिनि पौ पौ वारा ख़ुदा हुननि खे पुॼे त एग्ज़ैक्टली सागर भाउ कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था
1: मां गानो महबूबन खान साहब ॿुधणु चाहींदुमि पर थोरो मां ॿुधाईंदुमि
0: जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु
1: बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है कसम चाहे

0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है जनाब आपकी, आप तो वाकई काफी सुरीले हैं यार।
1: नाम सागर है सर।
0: सागर नाम का वैसे असर भी पड़ता है ना। नाम का असर पड़ता है आवाज पर, तो आपकी आवाज पर आपका नाम का असर बहुत अच्छा पड़ा हुआ है।
1: सर मुझे गाने का वैसे शौक है, जो सुबह को चलता है ना प्रोग्राम का।
0: जी जी जी जी जी जी,
1: जिंदगी गुजार है, उसमें कॉल करता रहता हूँ, गाने सुनाता हूँ।
0: क्या बात है आपकी, क्या बात है सागर भाई, आप तो बड़े सुरीले हैं। ये बताइए गाना किसके नाम करना चाहते हैं?
1: गाने दोस्त है
0: जी जी,
1: रोशन
0: अच्छा,
1: शौकत मीरानी
0: जी जी,
1: और रमजान चन्ना
0: जी जी,
1: और मैं खुद प्रेमी सागर।
0: क्या बात है प्रेमी, अच्छा सागर भी ऊपर से प्रेमी भी, क्या बात है। ये तो डबल डबल सुरीले हो गए, सागर भी है प्रेमी भी।
1: निक नेम होना चाहिए लाजमी।
0: हाँ निक नेम सागर भी और प्रेमी भी है, क्या बात है आपका। थैंक
1: यू,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब प्रेमी सागर भाई और बड़े सुरीले किस्म के सागर भाई हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब अगर आपकी आवाज में भी दम है और आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको सुने, तो आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कीजिए और जनाब हमें बता दीजिए कि आपकी आवाज में कितना दम खम है। आप हमें कॉल कीजिए, लेते हैं शो की एक और कॉल और अपने कॉलर को नहीं अभी टाइम हुआ जाता है जनाब एक कमर्शियल ब्रेक का। सो गाइज हम कमर्शियल ब्रेक की जानब बढ़ते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपके साथ साथ हैं, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अशफाक के साथ रहेगा शाम के 7 बजे तक।
2: सचल की सरमस्त धरती,
3: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
6: कैश किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवहां जे घरन जो छितू पक्यू हुजन त कैश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐ सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GAFM 90.4।
10: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252578 6।
6: जी हा, 2315525786।
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। 5:50 हो चाहते हैं और हम आपके साथ मौजूद हैं आपके शो आई लव यू ऑल में। GFM88 नेटवर्क से आप ये शो सुनते हैं। जनाब, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: ठीक ठाक मजा प्यारा मिठा नालो तो बुधायो किथा आयो के रहो मजे में रखे आई खोड़ सारो फायदो थे उन माओ। हाँ वकार भाई, बुधायो ता गर्मा गर्मी भी थोड़ी घट थी वही आए न?
1: सरदार गर्मी ॾाढी आहे, मूंखे चाचो आहे उसे नली प्यारो आहे, ॾाढो पखो जलकी थो कोन्हे को वॾो मज़ो लॻो पियो।
0: वाह वाह वाह, चाचे हुसैन जहिड़ा चाचा अला हर कंहिंखे ॾिबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जेका भाइटा प्यारा हूंदा आहिनि हुनजा डिंग विंग कोन हलबी आहे, माना हुन सां प्यार कबी
1: आहे।
0: हा त इहो तव्हांजो प्यारो चाचो आहे, ख्यालु रखंदा कयो हमेशा। हाँ वकार भाई, ये बुधायो गानो हलायां तो एक भाव फरमाइश कई सागर भा, खूबसूरत तरीके से गायो भी सही। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम।
1: कुछ दोस्तन मुखा मीर
0: तमा कुछ गाय भी तो बुधायो ना, यो गानो तमा भी गाय बुधायो मुखे।
1: मां दो बुधाया
0: बुधायो बुधायो भले।
1: हमें छोड़ दिया किस देश में, या लौट के आना भूल गए, प्रीत लगाना याद रहा, क्यों प्रीत लगाना भूल गए, हमें छोड़ दिया किस देश में।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, जे तांके विसारे छो वो गजनी हों ना, थोड़ो माना याददाश्त घट हों। प्रकाशक
1: सरदार मुसा दोस्त अब्दुल जबार सन्ना ऐं हुसैन अली जतोई, तव्हांजी पूरी टीम खे सलाम, तव्हांखे सलाम, मौला ख़ुशि रखे। फकर खां अब्दुल वहीद जतोई, तव्हांजे सभिनि लिसनर खे सलाम, मौला ख़ुशि रखंदो। इश्ताक भाउ प्रोग्राम थोरा वधाए जे कर
0: इनशाला इनशाला प्रोग्राम वधाईंदासीं, बसि थोरो सर्दी अची वञे त पोइ प्रोग्राम वधाईंदासीं। थैंक यू सो मच अदा, तव्हां पाण प्यारा माण्हू आहियो तॾहिं त तव्हां असांखे कॉल कंदा आहियो, तॾहिं त चाचो पखे पखो जलाई थो।
1: सो मच
0: थैंक यू। जी जना वकार भाई, प्यारे से भाई हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम लाड़काना, और लाड़काना वाले बहुत प्यारे प्यारे से लोग हैं, आप भी बहुत प्यारे से लोग हैं, और जहां जहां तक मेरी आवाज सुन रही है, जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, तमाम के तमाम बहुत प्यारे से लोग हैं। एक्चुअली हमारे सिंध वासी बहुत प्यारे से लोग हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: वाह वाह, वकार भाई हाँ तक याद कर माना जतोई वहीद वफा वहीद जतोई।
2: बिल्कुल बिल्कुल वफा अब्दुल वहीद जतोई चंदन ओड़े पाड़े आरा केटी शाबिल तालको जिलो सखर।
0: वाह वाह, ओड़े पाड़े था ताकि वफा वहीद जतोई चंदन घर वाला छा चवंदा गुड
2: उते मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि, अब्दुल वहीद बि आहे, छड़ वहीद बि आहे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। वफ़ा वही जतोई भाउ, इहो ॿुधायो कच्छ जा हाल कहिड़ा लॻा पिया आहिनि, कोई बोड वोड जी सूरत हाल त कोन्हे?
2: यार बोडल बिल्कुल हुई, शदीद बोडल नई बार सुठी बोडल ही, हाँ कुछ पानी मोटी आ पे ना।
0: अच्छा, अला रहम कंदो, अला रहम कंदो,
2: बोडल भी खैर ही हुए भाई पाका।
0: हाँ एक बिल्कुल तां सही था चो, तो अला साईं हर कंहिंखे पंहिंजे हिफ़्ज़ुमान में रखे। वहीद भाई, यो बुधायो गर्मा गर्मी थोड़ी घट थी आया अञा आ हले थी
2: साईं? गर्मी हवा आहे, गर्मी भी आहे साईं,
0: हवा भी आहे, गर्मी भी आहे,
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: के हुकुम कयो अथई हो पोतो पकड़े बेड़े ते विया वञी बाग बालीचन में छॾियो।
1: सही सही सही।
0: जॾहिं तोतो हुते खणी आ बाग बालीचन बाछाट छा न हूंदो?
1: जी जी।
0: त तोतो करे पियो वतन वतन वतन।
1: वाह वाह।
0: बाछा चयो वञ भिणा हुते त खेजूअ में पियो हो चुल्हार अचे पई दरिया त ॿुॾे पियो।
1: सही सही।
0: अॼु वतन वतन थो करे।
1: सही।
0: बादशाह तंग थी नौकरनि खे वरी हुकुम कयो त बाबा हे उते वञी छॾे अचो। उते ॿेड़े ते काए वञी उते जो छॾियऊं त उते वरी माठ करे वेही रहियो। अदा वतन वतन आज़ादी आज़ादी
1: आहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही ॻाल्हि
0: आहे। असांजो प्यारो पाकिस्तान आहे, हरी हरी आहे।
1: सही सही सही सही।
0: जाॾे ताॾे मनाईंसो त सावल ई सावक कोई सावक आहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदा वरी त वफ़ा हाणे गानो हलायूं न त मेदी साहिब नाराज़ थी वेंदो। मेदी हसन साहिब
0: दोस्त बि आहिनि।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: महेश भाकता जे नाले ते सॼो प्रोग्राम।
1: जी।
0: वकार जतो या लाड़कान खां।
1: जी जी।
0: हिकिड़ो बेटो नंढड़ो ॻाल्हाईंदा लाड़कान खां आसिफ चाचर।
1: जी जी जी। आसिफ चाचर ॻाल्हाईंदो।
0: हा जे ॿुधे थो न खोड़ सर सलाम मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीन में जतो मुंहिंजो भाटियो आया त जतो मुंहिंजो भाणी जो आहे गोली मार सकर खां रखी जतो।
1: जी जी जी जी।
0: बाक़ी जेके हाल ताल ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वही त जतो पर सॼे सतक सलाम मोर जतो बि ॿुधे थो बागर जे खां मोर जतो।
1: थैंक यू सो मच वफ़ा भाई जतो।
0: बाय बाय।
1: थैंक यू वफ़ा वही जतो के बाद हम चलाते हैं जनाब सागर भाई की फरमाइश पर बहुत खूबसूरत है मेरा सनम।

0: आवाज धुरती
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्की अमार का एक हमलो टिन्ही मुल्क समझो वो टिन्ही मुल्क तारीखी दिफाई मुआदों कर छो सऊदी अरब के शहर मका मुकलमा में टिन्ही मुल्क सरबराही इजलास में मुआदे से सयू कई हुई सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान वजीर आजम शहबाज शरीफ ए तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान मका दिफाई मुआदे से सयू कई परदेही वजार के तर्जमान चाहिए तो मुआदे तहत टी मुल्क दिफाई सहकार के हथी डींदा मुआदे मुल्क हमलो टिन्ही मुल्क हमलो तस्वर किया वो मुआदे जो मकसद टिन्ही मुल्क दिफाई निजाम के मजबूत बनाना है।

0: अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हकीकतूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पूरा करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा नाहियूं, अमेरिका के हाणे हकीकतूं तस्लीम करण घुर्जन, जंगबंदी बाबत कयल वायदा पाड़े।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
0: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252578 6
5: जी हाँ 2315525786
0: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: at 6:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो.
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत.
6: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली.
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी.
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन.
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी. यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842.
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
0: सुनते रहो GFM 90.4.
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
9: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125257 86
9: जी हा 2315525786
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़

0: FM. DAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मात

0: पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125252786।
1: जी हा, 3135525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: करायो आहे कोई बेज बेज हयां अथव चए न
1: हा बिल्कुल मोटरसाइकिल आणे छॾियो आहे
0: हा ऐं सलेंसर कढरायो अथव
1: जी
0: सलेंसर मोटरसाइकिल जो कढरायो अथव
1: न यार हाणे सुधरी आयो सफ़ा
0: हा वाकई गुड यार पर तव्हांजी आवाज़ मोटरसाइकिल में बि आवाज़ कंदी हूंदी घणनि माण्हुनि जी मां ॾिठी आहे जेका खीर खपाईंदा हुनजी भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ ईअं आवाज़ कंदी आहे
1: बिल्कुल हुई वाकई हुई पर हाणे नाहे
0: हाणे कोन्हे शुक्र आहे
1: चेंजिंग अची वई आहे
0: शुक्र आहे चेंजिंग अची वई आहे त इहो ॿुधायो रफ़ी गानो कहिड़ो ॿुधंदव
1: गानो पूरो कंदी फरमाश
0: हा बिल्कुल
1: ओ रुठो भलो आहे परचण खां
0: हाय हाय हाय हाय रुठो भलो परचण खां पोसाईंदो चेंज नाले था करणु चाहियो जल्दी कयो त मां इहो गानो हलायां
1: जेके बि दोस्त ॿुधंदा जिथे जिथे आवाज़ वञनि थो मुंहिंजो दोस्त अब्दुल्ला नारे जो
0: सही
1: ऐं ॿियो जिथे जिथे आवाज़ वञे थो इश्ताक नारे तव्हांजो सभिनीनि खे रफ़ीक जो तरफ़ इलाही सारा सलाम
0: वालेकुम असलाम रफ़ीक जो तो हाणे बंदि कर त मां इहो गानो
1: हलायां ख़्यालु रखिजो इश्ताक
0: जी जी
1: ओके
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ रफीक जी तो जनाब ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है इस गाने को प्ले कर रहा हूँ फायजा अली का गाना है अशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा कभी किसी का दिल मत तोड़िएगा जश्न आजादी का महीना है जनाब और जश्न आजादी में जनाब दिल खोल के खुशियां मनाइए और जनाब अब तक थोड़ा सखर सजा नहीं है तो मैं अपनी इंतजामिया से भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज मिलिट्री रोड के अलावा भी पूरा सखर है उसको भी सजाइएगा और लगे कि हम 14 अगस्त भरपूर तरीके से मना रहे हैं जनाब तो जल्दी से अपने घरों को सजाइए गलियों को सजाइए और खूबसूरत तरीके से जश्न आजादी का जश्न मनाइए अशफाक नियाज़ी आपके साथ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए अशफाक को दीजिएगा इजाजत ठीक है गुड बाय हैव अ नाइस डे लव यू ऑल एंड अल्लाह निगेबान

पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पीपी नून नवन सूबनि बाबति तमाम जी राय खे अहमियत ॾींदी। नवा सूबा ठाहिण अवाम जो फ़ैसिलो आहे त हू गॾु आहिनि, अवाम जो नाहे त इन जी मुखालफ़त कबी। अवाम जे ख़िलाफ़ थींदड़ को बि फ़ैसिलो हरगिज़ क़बूल नाहे। बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो चयो त मुल्क में केतिरा ई भेरा आइन टोड़ियो वियो, हाणे चवनि था त निज़ाम तबाह थी वियो आहे। निज़ाम नाकाम नाहे पर उनखे नाकाम बणायो वियो आहे। अवाम जी हाकमियत तस्लीम करण ताईं सिस्टम न हली सघंदो। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज़ लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े हवेली चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला जो चवणु हो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थी चुको आहे, नून लीग वधीक कामयाबी माणींदी। आज़ाद कश्मीर में 3 मरहले में थींदड़ चूंडुनि जो शेड्यूल तब्दील, ॿिनि ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमिश्नर भोंच ऐं सुध नौती ज़िलनि में चूंडूं मुलतवी करे छॾियूं। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमीशन मूजिबि हाणे बाग ऐं हवेली ज़िले में 3 मरहले दौरान चूंड थींदी, ॿिनि ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई आहे। पुराणी शेड्यूल मूजिबि भोंच डिवीज़न जे 4 ज़िलनि जी 11 सीटनि ते 3 मरहले में चूंड थियणी हुई। इरसा में चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जी मुक़ररी ते नओं तकरार, सिंध जे मेंबर डिपुटेशन ते मुक़ररी वारी तजवीज़ ते एतिराज़ वारे छॾियो। आपाशी खाते जे सेक्रेटरीअ खे ख़त, शफ़क़त हुसैन वेदो चयो आहे त तजवीज़ कयल ऑफिसर वटि आपाशी निज़ाम जी रेग्यूलेशन जो घुर्बल तजुर्बो ई मौजूद न आहे। मेरिट जे बुनियाद ते अहिड़ो ऑफिसर मुक़ररु कयो वञे जंहिं वटि आपाशी निज़ाम जी रेग्यूलेशन ऐं पाणी विर्छ जो वसी तजुर्बो हुजे। अमरीकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़ख़ीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर डोनाल्ड ट्रम्प परेशान आहे। वेझनि साथियुनि सां बि डोनाल्ड ट्रम्प नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमरीका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वादा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं, अमरीका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करणु घुर्जनि, जंगबंदी बाबति कयल वाइदा पाड़े। सिक्योरिटी फोर्सिस जो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि ॾखिण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म वर्सक में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जे चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। दीर में कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जहन भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सिस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो। پیو جی ایف اے ماتلی بدین
10: بس پو ہانے کھنو فون ائی پنجے اشتہار لائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
10: 03132525786
5: جی ہاں بڑی 331525786
10: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301143842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं तारीफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03132525786।
1: जी हा 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: हाय हाय हाय।

0: ॾाढो सुठो
1: सिंध की आवाज़
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कहती दींदा मुआदे तहत कें भी एक मुल्क से हमलो टिन्ही मुल्क से हमलो तस्वर किया वो मुआदे जो मकसद टिन्ही मुल्क की दिफाई निज़ाम के मजबूत बनाना है।

तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान चयो आहे त गडि॒यल दिफ़ाई माहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। इन सां गडि॒यल मनसूबनि खे हथी डि॒यण ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिण मदद मिली सघंदी। सऊदी अरब जे परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान बि चयो आहे त सऊदी, पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई माहिदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खु़शहाली जो सबबु बणजंदो। माहिदे सां इलाक़ाई अमन खे हथी मिलंदी ऐं उन जा मुसबत असर समूरे खिते ते पवंदा। सदर पारां पाकिस्तान, तुर्किया ऐं सऊदी अरब विच में गडि॒यल दिफ़ाई माहिदे जी आजियां। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त माहिदो खिते में अमुन, सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ अहम अगभराई आहे, जेको टिन्ही भाइर मुल्कनि जे महफ़ूज़ ऐं खु़शहाल मुस्तक़बिल जो अज़म ज़ाहिर करे थो। माहिदे सां टिन्ही मुल्कनि विच में दिफ़ाई सहकार वधीक मज़बूत थींदो। पाकिस्तान जी दिफ़ाई ताक़त दुनिया डि॒ठी ऐं तस्लीम कई आहे। दिफ़ाई मुआहिदा कंहिं जे ख़िलाफ़ जारियत लाइ न पर दिफ़ा लाइ हूंदा आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जो पाकिस्तान, सऊदीया ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे ते बयान। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ पारां बि टे मुल्की दिफ़ाई मुआहिदे जी आछियां। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं फील्ड मार्शल बि मुलाक़ात में मौजूद हो। मुलाक़ात दौरान बितरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी मजमू सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल। कसर उल सबा पहुचण ते वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म ऐं वफ़द जो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सऊदी बादशाह मोहम्मद

0: सलमान ऐं तुर्की जे सदर रजब तैयब अर्दोगान गॾिजी जुमे जी नमाज़ पैदा कई। इन खां अॻु वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसाकदार ऐं ॿियनि उमिरो अदा करण सां गॾु काबतुला अंदर बि नफ़ल अदा करे ज़ियारत कई हुई।
1: कि इनका हुकूमत कलैप्स हो चुका, ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू किया।
2: नून लीग का एक खास एक हिस्सा
1: वजीर आजम के हर कोशिश को नाकाम करवाता है। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है।
2: हम कब तक कश्मीर के आवाम को इंशाल्लाह पे चलाएंगे?
0: इस्लामाबाद की हुकूमत खतरे में आए, उन्हें उक्ति गणप शुरू थी चुकी। यह गाल असा न पा क्यों पर वडा वडा मानू भी चवन पाया हुकूमत वन वाली है। वजीर आजम के चौधारी वेठल मानून की नीयत साफ ना है। नून लीग जो एक हिस्सो वजीर आजम के रुगो मुखालिफ दुर न पर इतिहादन से भी विढ़ चाहे तो। ही असुल जेड़ो लाहौर ए इस्लामाबाद विच में आए। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जा आजाद कश्मीर के इलाके बाग में चूंड जलसे के खिताब दौरान नून लीग ते तनकीदी वार। बिलावल भुट्टो जरदारी चयो ता आजाद कश्मीर में मरहलेवार चूंडू इन लाए करायूं वयूं ता जीअं दांधली करे सघजे। खेन दांधली सटल इलेक्शन कबूल ना है। नून लीग वारा इन भुल में न रहन ता आजाद कश्मीर में हुकूमत ठाहे वठंदा। ये न सच कमीशन जोड़न लाए तैयार आहिन न ही वरी शफाफ चूंडू पिया कराइन। कश्मीर एक है तो चूंडू पे एक ही थन घुर्जन।
1: जो अवाम का मुतालबा हूं आज से लिखता हूं मैं अवाम के साथ, मगर साथ साथ जो अवाम का फैसला नहीं है तो ये उम्मीद ना रखें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवाम के खिलाफ जा सकते। ये ना तारीख में हमने किया है, ना आज कर सकते हैं, ना आने वाले कल कर सकते।
0: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त पीपी नवन सूबन बाबत आवाम जी राय खे अहमियत ॾींदी। नवा सूबा ठाहिण अवाम जो फैसलो आहे त हू गॾु आहिनि, अवाम जो न आहे त हुन जी मुखालफ़त कबी। अवाम जे ख़िलाफ़ थींदड़ को बि फैसलो हरगिज़ क़बूल नाहे। बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी चयो त मुल्क में केतिरा ई भेरा आइन टोड़ियो वियो, हाणे चवनि था त निज़ाम तबाह थी वियो आहे। निज़ाम नाकाम न आहे पर हुन खे नाकाम बणायो वियो आहे। अवाम जी हाकिमियत तस्लीम करण ताईं सिस्टम न हली सघंदो।

लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज़ लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े हवेलीअ में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थींदो। नून लीग वधीक कामयाबी माणींदी। आज़ाद कश्मीर में टे मरहले में थींदड़ चूंडुनि जो शेड्यूल तब्दील। ॿिनि ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमिश्नर भूंड ऐं सिंध नौती ज़िलनि में चूंडूं मुलतवी करे छॾियूं। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमीशन मूजिबि हाणे बाग ऐं हवेली ज़िले में टे मरहले दौरान चूंड थींदी। ॿिनि ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई आहे। पुराणी शेड्यूल मूजिबि भूंड डिवीज़न जे चइनी ज़िलनि जी 11 सीटनि ते टे मरहले में चूंड थियणी पई।

0: महांगाई जे घाणे में पीसंजंदड़ आवाम खे बिजलीअ जो बि झटको। हुकूमत सॼी मुल्क लाइ बिजली 75 पैसा फी यूनिट महांगी करे छॾी। नेपरा पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि बिजलीअ जून जी माहवार एडजस्टमेंट जे मद में महांगी कई वई। वाद आगस्ट जे बिलनि में के इलेक्ट्रिक जे वाक़फ़े इदारनि ते बि लागू थींदी। सिरसा में चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जी मुक़ररी ते नओं तकरार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
0: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03132525786।
7: जी हा 2315525786
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।